वरिष्ठ नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञको दैनिक सेवा बिहान 8 बजे र बेलुका 5 बजे नवदुर्गा क्लिनिक तथा चन्द्रगढ़ी

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज़ वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक टाइम चेक
2: अहिले बिहानको 8 बज्यो यस टाइम चेक का प्रायोजक गोल्डेन चिया
3: आत्मिक अन्धकार निराशाको क्षणमा सकारात्मक सन्देशले प्रेरित कार्यक्रम नयाँ

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक टाइम चेक
2: अहिले दिउँसोको एक बज्यो
3: यो टाइम चेकका प्रायोजक गोल्डेन चिया

0: छालाता यौन रोग के लागि अत्याधुनिक ल्याब प्याथोलोजी सेवा
1: फार्मेसी सेवा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न ब्युटी क्लिनिक सेवा
0: याद राख्नुहोस् यहाँ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा हरेक उपचार सर्वसुलभ शुल्कमा गरिन्छ। सम्पर्क डेल्फी स्किन केयर हस्पिटल दमकदस बेलडाङ्गी रोड, फोन नम्बर
1: 023-57-60-60,
0: मोबाइल नम्बर 98-526-76-76-0।
2: यहाँ प्रत्येक हप्ताको आइतबार एक दिन सेवा बन्द रहने जानकारी गराइन्छ।
1: दमक पछि डेल्फी स्किन क्लिनिक बिर्सामोडमा पनि खड्का कम्प्लेक्स बिर्सामोड, सम्पर्क फोन नम्बर 023-591-033, मोबाइल नम्बर 98-526-76-76-0।
3: अब हप्ताको सातै दिन डाक्टरको सेवा उपलब्ध।

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक फैंसिक
2: अहिले दिउँसोको 2 बज्यो
3: यो टाइम सिक का प्रायोजक गोल्डन चिया

0: Nagarik FM, XI 7.5 MHz, voice
1: a complete piping solution. Nagarik Sangsik.
2: अहिले दिउँसोको 3 बज्यो।
3: यस टाइम सिक्का प्रायोजक गोल्डेन चिया।

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक सेंसेक
2: अहिले दिउँसोको 4 बज्यो
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक गोल्ड रिंग चिया

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक ट्रैक
2: अहिले अपराह्न 5 बज्यो
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक गोल्डन चिया।

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज़ वॉइस ऑफ द पीपल।
1: नागरिक ट्राइसिक
2: अहिले साँझको 5:30 बजे हो।
3: नागरिक बुलेटिनको साथमा गोल्ड रिङ चिया।

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल।
1: अहिले बिहानको 5:30 बज्यो। नागरिक बुलेटिनको साथमा गोल्ड रिङ चिया।